0: कोई कीमत नहीं है क्या? एक घंटे से खड़ी हूँ।
1: घंटा? मिलने जुलने का वादा सब सिग्नल पे करते हैं, अपनी लापरवाही से कुछ लोग यहाँ मरते हैं।

0: डाल पैसे दे। क्या रे टाई सूट लगा के एक रुपए का कॉइन दिखाता है, पांच रुपए दे जट में चल लुक्खा।
1: कोई कहता है हाय हाय, कोई कहता है बाय,